सलाम ने मैं कबूल किया आपको और छोटी सानिया को मेरी और मेरी सिस्टर की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो खैर मुबारक ढेर मुबारक अच्छी मेरी प्यारी सिस्टर खिनवकार मीराल और ददीन लवासी बख्तवरा नहीं आप बिछनी बाकी सब सिस्टर को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक आई एम वरी शाह के वरीशा खुशहाल शाह जाओ जमा कजन ले गया उस्ता और यहाँ खुशहाल अख्तर दे मुबारक शाह पर नसीब की दी जानत शाह हर कदम दी पर राहत शाह पर जवानी दी बरकत शाह पढ़ी रिमिनी दरतवाए मचे अख्तर दे मुबारक शाह आई मिखरी नफरी दो के खुर खुशहाल शे बंडल ऑफ थैंक्स यो जहान मनने से हाँ

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amon 88.4. दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: अच्छा ग्रहण वर्धन को माँ सारा स्टूडियो चे माशाला द्वा पेगले हूँ ना स्थिति वड़े वड़े युवा सानिया और युवा अंशरा बीबी न बिल्कुल दूसरा बहुम खबर है कुछ दो इध चरंग रवान दा और बिल्कुल माँ सारा स्टूडियो चे ना स्थिति चिकम दा पर इंतजार ना स्थिति इशारे कवले सानिया रसरा नास्ता दा और अंशरा बीबी बिल्कुल दोनों बहुम पुश्तने कहूँ चे दो द अख्तर चरंग रवान द वाले चे मशुमानो द अख्तर दे मशुमानो भी टोल खंडुना मजे द दो भी नो बिल्कुल दोनों बहुम पुश्तने कहूँ अस्सलाम वालेकुम सानिया आलर मैक तर निज दोषा सानिया चरंग चल दा खैर दा ईद शरवान द लश्ते सा खैर आओ नो ईद टांक वाल मजादर कई करक वाल मजादर कई टांक वाल के सदा से खबर दा दिन मेघन करार सदा से खबर कवा टांक वाल ईद सब मजादर कर दा चेता ता टांक ईद मजादर कई हाँ टांक के सब शायदा से मजेदार दी चेता ता मजादर कर
1: दा
0: सामान खोडेर दा माशाल्लाह सामान मजादर कर दा हाँ अच्छा नो ईद तावल शोक शोले मजेदार रवान दा मुझे चिकम था आवाज आवरी रेडियो बंद है वो तो बता सब पैगाम और कॉल वाणे चिकम मुझे ता आवाज आवरी सलामुन बोर के ईद मुबारक ही बोर तवाए मैं एक तरह के वो तो सलाम चिकम मुझे और दुन की दा वो तो ईद मुबारक ही हुआ है वह चिमा तर अपना तासु टोल होता दे घाट अख्तर घाटे खुशहालियाँ डेढ़ डेढ़ मुबारक शाह वाया कहना वर्ता अंशर सर बहुम खबर है उनको अस्सलाम वालेकुम अंशर
2: वालेकुम सलाम
0: अंशर खान चरंगा ईद शरवान दा
2: जी
0: नो ईद चे चकम दा नन चे ईद वो वाशे मशे दी उखड़े
2: जी
0: वाशे दे डेरे उखड़े का कमी दी उखड़े
2: डेरे
0: नो ईद चकम दा चखवान मजास्ता का चरंगा
2: स्ताई
0: चरंगा ये खुआन मजा दा चेरे चा ईदी दर कड़ा या च ईदी दर कड़े दा
2: यस टोलो दर कड़े दा
0: अच्छा टोलो दर कड़े दा नो दा ईदी देखो जम्मा कड़े दा पदे बने बच्चे शाय के
2: ख्वाजो
0: ख्वाजो बा के ईद तब आसानिया ईद पद्मी और अजीब आसानिया ता पार्क ते चकर लगाओ
2: यस
0: कम पार्क तब जो
2: इस्लामाबाद बनता
0: इस्लामाबाद खुदाल तनस्ता का ना रणवाल पार्क तब जो रणवाल पार्क तब पसानिया बंदे चकर लगवे वाले चिसानिया खोया मुझे मिल मना था का ना सब मतेज रख रहे या स ना परपश्तो के खबरें का वा असबाब पसानिया चकर तब बन जावे अच्छा नो सानिया चिकमा दा रगले द टांग ता गे बांधे चकरे मकरे वाला का वा टांग को पार्क वर्ष का रखा अखपले मलगरे वर्ष का रखा चेदा टांग को चेदल ता टांग गनसी और दा चिकमी उरा जरूर दा पकुशाली तेरे की कचरंग
2: हाँ
0: सानिया द्वैम कलास के दा तो द्वैम कलास के हाँ नो नोर चिकमा दा स्कूल से चिकमा दा तकड़ा है का सानिया तकड़ा दा नो तदा चरंग वाई जिस तकड़ा है तदा चरंग वाई सानिया ता चिकन में तास द्वारों ने बजो टेस्ट आखल ना तास बजो चेक कहूँ चे तास उस चिकन आई वाता कड़ा था सही था हाँ बादशाह दा गपशप लगाओ जी जी अवर दुन को दा मुश्तरा द्वा वाडू के मार्शू में युवा सानिया युवा अंशरा मुश्तरा पर स्टूडियो ची बिल्कुल ना सीधी दो हूँ दे ईद चिकन में खुश

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 मेगाहर्ट्ज़
0: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे अविलाजी सुनत अमल दे
2: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी तासु वरना ढेर परेशान यो और ढेर गर्जितली पिड़ितली ढेर गर्जितली पिड़ितली यो
0: नो बिल्कुल मायूस की गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी दा तशरीफ प्रौड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेबना पल इलाज तरला सकवलेशे
2: और द नूरु मालूमात दे पारा अदगल नंबर कॉल कवलेशे
0: 0319 55 23 404
3: चाहतों के रंग

डोंट वरी क्लियर करता चलूं आप सभी को कि जी बिल्कुल ये केसन नेचुरल का ही शो है। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई खलील ताबिशवान साहब इस शो के होस्ट हुआ करते हैं तो वो कहाँ है, लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग। बात दरअसल ये है कि ईद का चांद जो है वो बड़ी मुश्किल से नजर आता है और हमारे जो प्यारे से भाई खलील ताबिशवान वो बिल्कुल ईद का ही चांद है और ईद के दिन वो गायब हो जाते, किसी को नजर नहीं आते, सिर्फ अपने घर वालों को नजर आते और ये घर वालों के साथ ही उनका टाइम स्पेंड करने वाला होता है। सो मैं मुझे कबूल कीजिएगा आज के दिन के लिए और मैं हूँ अपना वो पुराना वाला डेरा इस्माइल खान वाले जानते हो ना तासीर, और पारपुर वाले भी जानते हैं, टांग वाले नहीं जानते, खैर दा टेंशन माखलो उमा में पेजन चिखबल जान पेजन गली तरव कने क्लीवाल में यार जी क्लीवाल में टक वालो चरंग चाल द टक वालो शे टिक टाक तो बेतु न सियत न मिजाज न मकसद शपीर जी टूल पखेर सर दीरी जी। अच्छा आप लोग परेशान इस वजह से बिल्कुल ना हो कि मैं कभी पश्तो कभी उर्दू कभी सराइकी, उसकी वजह यह है कि मेरी जबान जो है चलते चलते चलते टांग चली जाती है और फिर आते आते आते पहाड़पुर से होकर डेरा इस्माइल खान आ जाती है। सो डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, अगर आप इस हवाले से परेशान है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे बाई द वे आज का ईद का दिन है और ईद के दिन बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी कोशिश से बड़ी चाह से बड़ी मान के साथ अपने छोटे से भाई से बड़े से भाई के साथ गई होंगी मार्केट गई होंगी, मिन्नत ये की होंगी कि भाई खुदा का वास्ता है तुम्हें ले आओ यार क्या कर रहे हो, मेरे लिए कॉस्मेटिक्स की चीजें ले आओ और मेरे लिए एक ही प्रोडक्ट लेकर आना है और वो है केसन नेचुरल के प्रोडक्ट। यस लेडीज एंड जेंटलमैन केसन इज द बेस्ट, केसन ब्यूटी कॉस्मेटिक्स द बेस्ट। और जी बिल्कुल केसन नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो मेरी बहनों ने लगाए होंगे और आज बिल्कुल आय हाय हाय उनके नए जोड़ों की तरह उनके नए नए सूट की तरह बिल्कुल मैचिंग हो रही होगी और उन्होंने तस्वीरें खींची होंगी। लेकिन मुझे पक्का यकीन है जो बहन जिस भाई ने केसन के प्रोडक्ट यूज किए होंगे फेस के लिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता होगा, क्रीम इस्तेमाल करता होगा केसन के, उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी फिल्टर लगाने की, फिल्टर से हो जाए आजाद और कोई भी कैमरा हो आपने वैसे भी चमक करनी है। जी वो जो लोग हैं जो कहते हैं हाय मैदा हाय मैदा हाय मैदा, मैदे वाले लोग परेशान बिल्कुल ना हो, उन्होंने बिल्कुल आज दबा के ये दे मार सवा चार वाली गेर से आपने बेहतरीन करके ईद वाला गोश गाया होगा और अगर गाया है दैट्स वेरी गुड। और मुझे यकीन है कि गाने के बाद आपको बिल्कुल भी मैदे की वजह से तकलीफ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। उसकी वजह क्या है जी लेडीज एंड जेंटलमैन, उसकी वजह भी यही है कि आपने इस्तेमाल किया होगा केसन का सिरप, क्योंकि केसन का सिरप केसन का मैदा सिरप जो है वो जलन और गैस को कर देता है बिल्कुल खत्म और हर चीज हो जाती है हाजम लकड़ाजम पत्राजम फौरी आराम महफूज इलाज, ये है केसन का कमाल। सिनिसेड एक ऐसा केसन हाजमा कंट्रोल सिरप है जो कुदरती तौर पर आपके मैदे की जो जलन है तेजाबियत है वो बिल्कुल खत्म कर देता है। जिन लोगों के हाजमे खराब हैं और बार बार परेशान होते दो निवाले लेते और कहते हाय पेट भर गया, खाने को तो दिल कर रहा है लेकिन पेट भी जगह नहीं, अब यार खाने को दिल करेगा और आप खाएंगे भी लेकिन प्लेट खाली हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग। सुलकी बांधी ओ के यार आंधी ओ चुचु हम मार भी चिरता हम मार भी नो गई ठोल ता वेलकम वाइम पखेर रागले वाइम ओ तासो माँ पर मिलगिरी भी बिल्कुल मिलगिरी ममुदा जी तर चलो रो नवंचा पिंजो बजो पर डेर जाते खबरी बतर सर कौन जक जर जर जगेर ची तासु सर जब मजलिस का वलगानो तासु का मार वो नो बिल्कुल मैसेज ना शुरी को ए जिनको ए जड़को ए बुढ़ा गानो ए जवानानो चिरता।

0: ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, केसन द लाइव शो, केसन प्रोडक्ट का ये लाइव शो केसन एफएम रेडियो से इस वक्त पहाड़पुर एफएम 97.4 यानी पैगाम रेडियो, इसके साथ अमन रेडियो 88.4 और ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान पे बैठ वक्त तीनों स्टेशनों से केसन का ये लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हम आपसे रिव्यू जानना चाह रहे हैं इस ईद के मौका पर, ईद के इस अजीम दिन के मौका पर आपसे ये जानने की कोशिश करें कि भाई जान आपने अगर केसन इस्तेमाल किया है तो आपने केसन को कैसा पाया है, केसन के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, केसन ने आपको कितना फायदा दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रिव्यू आप अगर देना चाहते हैं, अगर आपने इस्तेमाल किया है तो ये बिल्कुल आप भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल लाइव शो है और लाइव शो में कोई भी कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकता है। नंबर नोट कीजिएगा, नंबर है 0304-99-25-388 यानी 0304-99-25-388 0304-99-25-388 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप रिव्यू दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जी आपने केसन को इस्तेमाल किया है तो केसन को आपने कैसा पाया है, कैसा प्रोडक्ट था केसन, आपके जो डिमांड थी, आपकी जो उम्मीद थी उस पर पूरा उतरा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है? वालेकुम सलाम, कौन है, कहां से है मेरे साथ? नहीं, रेडियो पाकिस्तानी बल्कि ये है केसन का प्रोग्राम लाइव।
1: केसन वाला प्रोग्राम
0: है ना? केसन वाला प्रोग्राम क्या जी? बादशाह कुरैशी, बादशाह खान से टिक टाक के मुबारक सी चरंगा चाल दसाए बशीर टिक टाक हो
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
0: चरंगा दा केसन पावाले सर अच्छे मालूमात लरो केसन खुम इस्तेमाल करा खुन दा जी या कोर वाला तो खुम नहीं दा रहा बड़ा
1: मतलब चेक करा दा केसन देख खले मतलब रिसर्च रा नहीं
0: शाह جہان مننا امین امین سر نیکسٹ کالر گوری چوک تھا کیسن شو چھ السلام علیکم جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک یاسر نہ تاثیر تادی مبارک سی چرنگ اور روجان چوکی حکم جی نہیں ماسرا
1: محمد علی خبر باما
0: محمد علی خان صاحب اور کم جی نیو ٹانک دکم جی نہیں ہو ٹانک میں کونے نہ خبر کو حکم اسی میں نہیں ہو جار دیوی ڈبرے والو تا قربان اور توایا چرنگ ڈبرے ڈبرا مشاہدہ ضروری تا دعا گانی دی چرنگ دا کیسن پہ حوالے سر اچ معلومات لرے کنے لرے ہاں بے چرنگ ہو صابن استعمال والا دیر گران خون دا اچھا چلو بیا ڈیر اچھا خبر آ دیر اچھا خبر آ
1: دیر
0: الحمد للہ اور دعا گان ارتقاؤ ان شاء اللہ بیا بتا سر ملاقات کیجیے گا پروگرام سے اوکے جی نیکسٹ کالر تھا موقع اور کو بگرو چھ دے کیسن پروگرام چھ پری وقت پر مرتا چوک تھا السلام علیکم جی جناب خبریں کہو جی مشرا چش والا جی صاحب دوائی خوستا چش والی دوائی پتہ کرے చిష్వాలా కబ్స్ వాలా గోరా అజి సాహెబ్ ఖబర్ అదా సీదా కబ్స్ చికల కిజి నో ఇన్సాన్ దాస్ ఖరాకున ఉన్ ఖురి కన చే అగా కల పేట్ గేడి తలాడిసి నస్ తలాడిసి నో అగా బే ఖరాక్ చికం ద సఖసి నో దేది పారా దా కేసన్ వాల్ చికం హజ్మే వాల్ సిరప్ నదా దాజ్మే వాల చికం దవేదా దగా ఇస్తమాల్ క ఇన్షాల్లా దే సర బదిదా మసలా హల్ సి సయిదా జీ డేరా మననా తాసు శుక్రియా ఓ జీ బిల్కుల్ గ్రాను ఆర్ విదున్ కు చికలా మైదా ఇన్సాన్ వాల ఖరాబ్ పసి నోబియా దేద దా కిసమ్ మసైల్ చుకుం ది ఆశురికి జీ కుజు ఆర్ విదున్ కు తాసు కా ది మైదే మసలా బి ఉస్ ది మైదే ది కేస్ యా ది సినే జలన్ చికుం మి మసవీ ది అగే హల్ కౌలు ది పారా తాసు ఇస్తమాల్ కు కేసన్ హాజ్మా కంట్రోల్ సిరప్ కేసన్ హాజ్మా కంట్రోల్ సిరప్ చికం ద ఆబది తాసు టోలే ది మైది సర మున్సలిక్ మసైల్ చికమి అగా బ ఖతమ్ కవి ది గేడి శికల గేస్ ముకల ఖతమ్ సి యు నో గేస్ వాలే జుడి సి గేస్ చిక జుడి సి చే నస్ చికం ద అగి షయాన్ జమకి ది వజిన ఔ బ గేస్ జుడి సి ఔ ద జమకి ది వాలే పచి చికల ఇన్సాన్ హాజ్మి సిస్టమ్ చికం ద అగా ఖరాబి నో ది ది బార ఇస్తమాల్ కు ది కేసన్ వాల్ హాజ్మా కంట్రోల్ సిరప్ او دا هاضمه کنټرول سیرپ چکم دا دا به یو خود مېدی چکم سوجک مو دا مېده سوجی یا تیزابیاتی وی تر خطر خو ارجووی پسړی راجی خوراکې نازمه کیږي یو دوه خلې مړې خوري او بیا ورته چینی په انتظاری او پریشان ای چې یار دا بچرنګ ازمه کیږي دې سره دې سینې چې چکلا سوجک وی او به انسان نشي چې دور سوجک بازو پر شوري سي نو دو ټول مسلو دې پر تاسو استعمال کو دې کیسن وال حسمه صرف ان شاء الله تاسو به ټول مسائل چې کومي دا یو جی به سره حل سي خو جو اروېدون کو تاسو هم کال کولای سو نمبر در سره نوٹ کو 0304 9925388 او دې پروگرام چې ما سره شرکت کولای سو ډیرا اسماعیل خان سره تعلق لرون کې چې کوم اروېدون کې دي عام خل چې ټول ودري ډیرا اسماعیل خان مالو اوٹھی ونجو دیگر تیگی دریا تے نہیں ونجو ایسا جو السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام صحیح کور تے کتو گال کرے دے پہ بے
1: لالا میں آرے فلے نبیا توران کل
0: کتو کل
1: توران نو
0: اچھا اچھا توران کل کی میں آلے صحیح ٹانک توران کل ہی میں آکو چلو اج پہلی دفعہ سنا وے تا چس آ گئی ہے پتہ لگا کہ ریڈو ہے چلو جی بہت مہربانی انشاءاللہ خوش رہو انشاءاللہ کچھ ہی نہ تھی میں اوکے جی ٹانک والو آپ ووٹ لے گئے ہو یار ٹانک والے کمال کے لوگ ہو یار آپ لوگ تو ماشاءاللہ ٹانک کے لسنر جو ہیں بڑے اچھے ہوئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان والے شاید ابھی تک سو رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور پہاڑ پور والے جو ہیں یہ دونوں ابھی تک سو رہے ہیں کیونکہ عید کا دن تھا بہت سارا کام انہوں نے کیا اور کام کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا ریسٹ کریں اور اس تھوڑے سے ریسٹ کے لمحے میں یہ بھول گئے کہ آر جے تاثیر بھی تو آ سکتا ہے بٹ ڈونٹ وری اباؤٹ ایوری تھنگ آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا تاثیر آتا جاتا رہے گا تاثیر کا کیا ہے تاثیر آج آئے یا کل دوبارہ آ جائے گا لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کیسن کے پروڈکٹ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنے کیسن کے پروڈکٹ آپ لوگوں نے ضرور استعمال کرنے ہیں کیونکہ کیسن نیچرل پروڈکٹ جو ہے یہ ایک بہترین آپ کے لیے پروڈکٹ ہے ایک بہترین پروڈکٹ آپ کے لیے لانچ کرتا ہے آپ بالکل کیسن کے پروڈکٹ یوز کیجیے گا اور اس کے حوالے سے فیڈ بیک جو ہے وہ میرے شو میں جب میں شو کروں تو تب آپ دے سکتے ہیں اگر میں شو نہیں کر رہا خلیل بھائی کر رہے ہیں دین آپ خلیل بھائی کے شو میں بھی اپنا لائیو فیڈ بیک دے سکتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین نمبر ڈائل کیجیے گا نمبر ہے 0304 9925388 नंबर एक मरतबा देख लीजिएगा, अगर डायल नहीं किया तो मेरे पास एक कॉल एक से दो मिनट है, मैं मुख्तसर से लम्हे के लिए आपको मौका दूंगा। नंबर है 0304992538, यानी 0304-99-25-388। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं मेरे शो में इस वक्त इस लम्हे, और मतलब चार के बाद जब पाँच बज जाएंगे, जैसे ही पाँच बजेंगे और मेरा शो खत्म हो जाएगा, दैन मेरी तरफ से टाटा बाय बाय अस्सलाम वालेकुम हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, 0304-99-25-388 पर जिन लोगों ने कॉल्स की उनका सबका शुक्रिया। लास्ट कॉलर ऑफ द शो आज का, ईद का दिन है, बड़ी ईद का दिन है, पहला दिन है, और ये कॉलर जो है ये कॉल करके मिस कॉल हो गया, लेकिन अगले कॉल को मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक तबियत मुर्शिदा अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिदा चो का हुकुम जी ने खबर को टांक रजाक का लुने न चरंगे मुर्शिदा ठीक ठाक तबियत मुर्शिदा गर्मी चरंगा दा दा प्रोग्राम शुरू सलाय चलो रो नाउ चाउस पिंजो पोरे माता दलत स्टूडियो ते यो कसराल है आगवा चूफ मगाव पुष्टने मार चकम द सड़ाई सो जावी लग गया दा तासु पल हल मरदासी दा हां जी शाम दरत हुए हसे बची दा किसन प्रोडक्ट इस्तेमाल करी दी कना चलो जी ते इस्तेमाल का और रिजल्ट पे माता वाइज द प्रोग्राम छे तासु सरा बाम इंशाल्लाह राजन अपते से बदरी वरजी तासु सर बज खबर अतरे को औ तासु बबे माता वायु छ तासु इस्तेमाल करे नु चरंगा प्रोडक्ट तासु ता लग रे ओके जी थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन केसन का ये लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और सुन रहे थे अब से कुछ देर के बाद ये तय हो जाएगा क्योंकि मैं चला जाऊंगा और आप लोगों ने अगर अब तक केसन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि केसन का जो प्रोडक्ट है ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। खलील ताबिशवान साहब इसके हवाले से तफसीलन आपको बता चुके हैं। आज चूंकि ईद का शो था, ईद का दिन था, तो मैं जैसे आपसे रिव्यू लेना चाह रहा था और रिव्यू भी ये चाह रहा था कि आप बिल्कुल 100% बिल्कुल सब चीजों से बेफिक्र होकर आप अपना रिव्यू दें कि आप लोगों ने जब केसन को यूज किया तो कैसा पाया। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मैं फिर कभी चलते चलते आपके साथ इस शो में आ जाऊंगा, आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। खलील भाई जो हैं वो वक्तन फक्तन आते हैं, खलील भाई से आप इसके बारे में मजीद मालूमात भी सुनेंगे। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मैसेज किया, कॉलर्स को मैंने ज्यादा मौका दिया। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। नासिर।

0: music, your request.
1: This is Radio Station, Radio Aman.
2: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
4: बीमारी हफ्ते अविलाजी सुनत अमल अविलाजी सुनत अमल
5: पोस्ट कचेरी तासु तदासे अमराज भी चित्तासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जितली पिड़ितली ढेर गर्जितली पिड़ितली हो
4: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी दा तशरीफ प्रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
5: और द नूरु मालूमात दे पारा अदग नंबर काल कवले शे
4: 0319 55 23 404

हाँ, जिन्हें कुर्बानी नहीं की थी। दोस्तों सोच करो, जिन्हें कुर्बानी नहीं की थी, अल्लाह ताला उन्हें कुछ ताकत दे दे। मैं तो ये कहना मेरे सोने सजनों के आंधा साल आवे तो जिन्हें कुर्बानियाँ की तेन हिक की थी, अल्लाह ताला उन्हें कुछ डबल कुर्बानी करण की ताकत दे दे। जैन नहीं की थी ऐ पाक परवरदिगार, उन्हें को इन इन हो कुर्बानी की थी, इन्हें दे नाल शाना बशाना होवें, वो भी कुर्बानी दे मालिक बन वंजन। रब्बिल आलमीन उन्हें कोई कुर्बानी दी ताकत अता फरमा, गैब खजाना चो सबब करवा कि रब्बिल आलमीन हर कै को अपने घर दी कुर्बानी देवे, बाल बच्चों को नसीब थी ने, बाल बच्चे बड़े खुश थी ने, कहंदे घर लेला, कहंदे घर बकरी कुर्बा दान वछा, ते कहंदे घर च होंदे नहीं। लेकिन दोस्तों अस बहुत कमजोर या सबों मुगालते च वेंदे पे कि ईद दी दीवार होंदी कुर्बानी होंदी है, लेकिन अस आपे खा पाने हैं, लेकिन इनते उनते अखियां नहीं फिरेंदे कि सारे मोहल्ले सारे शहर सारे इलाके च इवें भी घर हिन जिन्हें कुर्बानी नहीं की थी। लेकिन वो सबर का तकादा सबर का पैमाना न पी पाया उन्हें, सबर की थी पाया उन्हें, कह दे अगू ना नहीं चाहते कि मैं कुर्बानी नहीं की थी। दोस्तों वो तो होंगे अपनी जात है ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ चाहिए कि अखियां खोल के फेरूँ, अखियां खोलूँ, इनते उनते देखूँ, अपने भरा को रिश्तेदारा को गवांडियाँ को महल्ले को शहर वाले को पहले ईद पर पहले सोच करूँ कि केरा केरा कह के कुर्बानी नहीं की थी, या कह के जानवर नहीं की था, कह दुम्बा नहीं की था, कह लेला बकरी नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो उन्हें घर सफा साफ नजर आंदा है कि इन घर पिए तो छोड़ ईद की राह पता लग रहा है कि इन घर कोई जानवर नहीं आया, कोई कुर्बानी की कोई तरतीब को नहीं। तो जहन च रखे करो, अल्लाह ताला का रहम करे कि अल्लाह ताला का आबाद रखे सी, तू सब हमेशा कामयाब हो, गरीब का ख्याल रखे सो, अल्लाह थोड़ा ख्याल रखे सी, ईद की रात पता लग रहा है नाने खारिश कुर्बानी नहीं थी। दोस्तों हजे ले अगर कुर्बानी थी है तो अपने बाला बच्चों का खावन का पहले, आपे खावन का पहले, अपने दोस्त रिश्तेदारों को भेजा का पहले, पहले पहले ऊँ घर तो भेजो जेरे घर कुर्बानी नहीं होती, जिन्हें ऊँ तो कुर्बानी के तैरा गोश वैसी अल्लाह ताला का इंतजार नहीं। हमेशा कोशिश करो अल्लाह ताला हर वक्त ये नहीं कि ईद ईद नहीं, कोशिश करो इन्हें कारकर्दगी दिखाओ, इन्हें किरदार दिखाओ कि ईद तो छोड़ हर वक्त हर महीना हर हफ्ता हर दीवार हर घंटा हर मिनट अल्लाह ताला तेरे को राजी हो गए, इन्हें अच्छी जिंदगी लगाओ, गरीबों का बहुत ख्याल करो। अगर आज नहीं थी गई तो आंधी ईद बहुत

लेकिन जरा ऊकन बाद ठीक वजन बाद जरा दोस्त घर तो हमेंदा है तो ओ घर वाले जरे होने ओ वत उनन दी बीमारी शाम तक लग रहे वंडे बहने पे आने सुबह तक ही लगे बहने वंडे बहने पे आने लेकिन जवान तक लगे रहने आप जान छोड़ के आप जान को बचा के फस की लाग डिप्टी करके नहीं बस आप यारा दोस्तों ना शाला इन आप यार दोस्त ही खुश होमें यार दोस्त सारा दे जीन लिया होमें शाला ए महफला होमें जवान तब के दे जवानिया होमें जवान को तत्ती वार न लगे अपने शुगल इच होमें तो मैं को काल दे जरिए दे सेसो के आज दा शुगल तुसा केरे रंग ते लंगे ने पैवे की में ईद मने दे पैवे तो दोस्तों मेरे नाल काल दे जरिए आओ ते काल दा नंबर 09635114888 लेकिन एक पहले ईद की खुशी है तू सबको मैं एक सॉन्ग सुनावा चाह क्योंकि आज ईद है तू सबको एक गाना सुनावा चाह मज़ेदार मैं तो कहना कि आज शफीउल्लाह रोकड़ी तू सबको सुनावा चाह ता गाने कण बाद आसो ई प्रोग्राम से बहुत मेहनत रासो ई प्रोग्राम में खुशी पे लेसो अल्लाह ताला हर कम खुशियाँ दे कि आज ईद ईद की खुशियाँ जर का प्रोग्राम का ना है तो ईद की खुशियाँ प्रोग्राम के हवाले तुम केरे खुशियाँ मनेंदे पे भी एक ईद का तो ना हों लेकिन खुशियाँ इंसान अपने वास्ते एडे को बनाने चाह खुशियाँ होंगे ढोल होंगे यार दोस्त होंगे सोहबत होंगी है लेकिन तुसा केरे खुशियाँ मनेंदे पे वे ई गाने कण बाद मैं नाल कॉल के जरिए आसो तो मैं नाल ई खुशी के बारे अलेसो सुनिए शबीला रोकड़ी।

शो सुनण वाला हर प्रोग्राम उ आखदा कि एफ एम रेडियो टांग जे रेडियो आर दा निकला ते सारे प्रोग्राम मैं बकायदगी नाल सुनना, लेकिन अफसोस मैं कॉल ना कर सकदा क्योंकि हर कहंदी अपनी शौक है, कोई कॉल शौक होंदा, कोई सुनण दा शौक होंदा। दोस्तों मेहरबान, बड़ा ए अच्छा प्रोग्राम सुनण वास्ते ते उंदा बड़ा तजर्बा है कि ए प्रोग्राम अच्छा है, ए ठीक है, ए नहीं ठीक, बड़ा तजर्बाकार है। लेकिन उको ए गाना बहुत पसंद है, बड़ी अपील की चीज़ ते ए महनाज दा गाना, फिल्म खुशबू, अपने टाइम दी जबरदस्त फिल्म, जबरदस्त मौसीकी, जबरदस्त आवाज़, बड़ी अच्छी स्टोरी, बड़े अच्छे अदाकार ते बड़े अच्छे पाकिस्तान दे बड़े बड़े सिनेमा घरां दी ए फिल्म जीनत बनी आई। तो दोस्तों ए अज दा ए गाना खुशबू दा महनाज दी आवाज़ मेहरबान दे नाम है।

समझ नहीं आ रही है, लेकिन गाना तो समझ गए, गाना तो बुझ गए, अलावा तो बुझ गए, सारे हर शायद बुझ गए, लेकिन असा अला नहीं सकते। तो मैं आके बस अलाया करो, ये अलावन अलावन ही तुसा सिख वैसो, अल्लाह ताला सबको इनको सीखे सी चा। तो दोस्तों एक ओ मुलाजिम दुकानदार के कोल एक मेहरबान बैठा ही, तो अमन आवाज छीना की फरमाइश की, सोने सजने तुसा साढ़े सारे अखियां ते सारे खुशियां अपने खुशियां। दोस्तों ये प्रोग्राम ये स्टूडियो FM रेडियो ये सारे प्रोग्राम तुसा दिन तुसा साढ़े वे तुसा खुशियां साढ़े तुसा खुशियां वास्ते दुआइयां मंगने के अल्लाह सबको खुश रखे। कोशिश सारी ये होंगी कि कैको खफा ना करूँ। अमन आवाज छीना का सोंग उमर दाऊद कुंडी साहब मैं बराबर कर दिता है, कंप्यूटर लैन के बैठे तो देखते हैं। अमन आवाज छीना आ गया कि बल्ला पिछाते ईदा आ गई। दोस्तों आओ रल के सुनने, मेरे नाल रहो, मेरे नाल नाल रहो।

0: मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

स्टार्च इतना नाजुक टाइम है, अल्लाह करें कि जल्दी फर्स्ट डेट आ जाए। वेलकम एंड सुनमशी जन्नती शाह स्टार्च, आज तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, सामो फन के नसी मन ना खुशहाल है कदर मन शाह बिल्कुल जी नन से कम देखे ना इसी भी कहना बाहर जी गोरा टोल खाली खा दासी नहीं देखे हर सड़ी से चुकम देखे इसी होने से और हर साल चुकम देखे ना फैसिलिटी होने से हर चार चुकम देखे ना आगा चुकम दे सुखलियात नहीं चुकम दे टोल तखीर के हाँ सी सुबह जी चा सर इसी देखो खान के भी खा।

है आखिर कसम रतावा निशम का पैसे वाला गवा ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना